0: बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है।
1: जी,
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए बिना थाने जाए हुए आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930-1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं, एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है, या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पॉर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछें क्या सवाल है आपका।
2: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से।
1: जी
2: सर, मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है।
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है
3: तो, और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें
1: जी,
3: इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजी के अधिकार का हनन होगा, और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब FD 7% है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3-2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए तो वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
3: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए कर मैंने 12,300
1: पहले ही काट लिया।
3: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12%
1: हो गया।
3: जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए, गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: नमस्कार सर।
3: नमस्कार।
4: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस का

0: सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
1: जी सवाल पूछिए।
0: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
2: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है, कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है।
1: जी
2: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं। अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारत में एक नई क्रांति चल रही है, ऐसे बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। यहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है, आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेजेंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार से अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
3: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारा टीम है। मैं ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लिंक में सर्कुलेट करके बना देता है, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें तो अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, इसको लेकर हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं? मान चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हमको पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाता है, उसको लेकर थोड़ा सा।
2: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी की गाड़ी, कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कॉन्ट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध आके पी जाएगी, इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। ना सतर्क रहे तो संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूं कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इंपर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। कुछ हो या ना हो, अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो, तब तक मैं हाजिर ना हूं। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूलमंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा डिजिटल नागरिक सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से?
4: नमस्कार मुकेश सर, स्पष्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार।
1: जी नमस्कार
4: सर, मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट बातें नहीं समझते

0: जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट के अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम छोटे मोटे ऐसी घटनाएं होती है, हम राजनीतिक संबंध में लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं ना रोक टोक की, तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बन जा रही है, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं। क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं लोग या अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या? ये
1: देखिए बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र संबोधित कर रहा था, मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इट्स कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईटीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाई द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुडापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी इसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नजर नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
2: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
1: जी
2: एक और जुड़ गया हमारे साथ महाराष्ट्र से विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: विजय कुमार जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
3: नमस्कार
2: जी।
1: जी नमस्कार,
3: मैं विजय कुमार स्वामी गांव बस्तवा छत्तीसगढ़ जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
2: जी
3: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
2: जी
3: मेरा बटन का फोन है।
2: वेरी गुड।
3: और ये बटन के फोन में धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
1: देखिए धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकती।
2: बिल्कुल,
1: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसको जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है, हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये ना सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है कि मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट ले लीजिए, ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है, फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
2: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 के हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?

0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्य मां फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है। इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है। कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प, आप तुरंत cybercrime.gov.in जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला, बैंक
1: में जाना चाहिए।
0: भाई बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, अब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहाँ फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
2: जी, मैं आपका और का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
2: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं, महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं, थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov.in पे जा सकते हैं और वहां पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है, उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा, अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, तो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ, ये तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है, अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है इंटरमीडियरीज है, उनका दायित्व बनता है कि जब द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है। और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं, वहां जाइए बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए, बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलिजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे, आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजेक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है?
3: जी जी, नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं, कह रहे थे कि अगर आप

0: तो बिल्ली दूध पीता है तो बहुत अच्छा लग रहा था
1: जी। सवाल पूछिए
0: जी। प्रश्न प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
1: जी।
0: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
1: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फोन चुराते हैं, फिर आपके नाम पर आपकी ड्यूटी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंट में जाने हैं, आपके फोन पे आने हैं, उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है, एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66 बी भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफकोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो चोरी के अंदर आता ही है। आप उसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना जरूरी है और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
2: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
2: जी।
3: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
1: देखिए, अगर आप इस श्रेणी में आते हैं, बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें। बेसिकली सतर्क रहिए, सावधान रहिए, एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
2: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं, हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आप हम आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी ओटीपी सीवीवी पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का जिन हमसे आज जुड़े हैं और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। समान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से

0: में आर्टिस्टों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दो
2: ओडिशा सरकारंक उच्च शिक्षा क्रीडा और युवा व्यापार विभाग मान्यवर मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज एवं जगद्गुरु कृपाल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष स्वामी श्री मुकुंदानंद सभा समारोह प्रारंभरे प्रथमे जातीय संगीत एवं परे ओडिशा पुलिस स्वतंत्र ब्यांड द्वारा राष्ट्रगान परिवेषित होता यापर प्रदीप प्रज्वलन सह आनुष्ठानिक भाव सभाकार्य आरंभ होता जगद्गुरु कृपाल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष स्वामी श्री मुकुंदानंद स्वागत भाषण रखिथिले परे मंच रे उपस्थित अतिथि मानंकु संबर्धित करा जायतिला ओ जगद्गुरु कृपाल विश्वविद्यालय एवं जगद्गुरु कृपाल योग मिशन संपर्कित एक लघु वृत्तचित्र मध्य प्रदर्शित होइतिला। ए उद्घाटनी कार्यक्रम रे समवेत जनसमागमक उद्देश्य रे माननीय राष्ट्रपति निजर अभिभाषण रे कहिथिले
3: आजिर एही उत्सव रे मंचसिन ओडिसार माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभमपति ओडिसार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी ओडिशा सरकारंकर उच्च शिक्षा मंत्री श्री सूर्यवंशी सूरज विश्वविद्यालयर प्रतिष्ठाता तथा अध्यक्ष स्वामी मुकुंदानंद सरस्वती जी विश्वविद्यालय परिवारर सदस्य वृंद प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिगण स्वजन मंडली समस्तंकु मोर नमस्कार जुहार जय जगन्नाथ। एही विश्वविद्यालयर उद्घाटन एवं प्रथम शिक्षा वर्षर शुभारंभ अवसर रे आपण मानक गहरे उपस्थित होई मु खूब आनंदित। आज एही विश्वविद्यालयर उद्घाटन कृपाळुजी महाराजंकर जन्म कल्याणकारी चिंताधारा को साधारण करिबा दिगरे ए उत्तम प्रयास। एही महत् कार्य रे जेउ मानंकर अवदान रहिछि सेमानंकु बहुत बहुत साधुवाद जणौछि। सुधीमंडली ज्ञान संस्कृति आध्यात्मिकता और सेवार समृद्ध परंपरा ओडिशा माटीर वैशिष्ट्य महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर एही पूर्ण भूमि जुग जुग धरी समन्वय करुणा और मानव कल्याण बार्ता दे आसी। कटकर महती माटी उत्कल गौरव मधुसूदन दास कर्मवीर गौरीशंकर राय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जननेता विजु पट्टनायक परी बरपुत्र गणकर जन्मभूमि अटे। एहा मध्य उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास और उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महतावंकर कर्मभूमि। जनसेवा साहित्य और संस्कृति क्षेत्र को कटकर अवदान बेस गुरुत्वपूर्ण और प्रेरणादायक। एपरि ऐतिहासिक स्थल प्रतिष्ठित एही विश्वविद्यालय भारतर प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा को आधुनिक शिक्षा संगे जोड़ी समाज और राष्ट्र सेवा निमंते एक शक्तिशाली माध्यम हेबो बोली मु आशा करूछ। सजन मंडली शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन और माध्यम नुहे बरं व्यक्तित्व गठन सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रर समृद्ध भविष्य निर्माण एक भित्तिप्रस्तर अटे। कटक जन्मित स्वाधीनता संग्रामी रमादेवी स्मृति में स्थापित रमादेवी विश्वविद्यालय मु उच्च शिक्षा लाभ करिछि। महिला मानक उत्थान पाई रमादेवी सर्वदा सक्रिय थिले तांको प्रेरणा मो जीवन को दिग्दर्शन देबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करिछि। एही विश्वविद्यालय नीति निर्धारण गण को मोर अनुरोध सेमाने आरंभ रही वंचित वर्ग जनजातीय विद्यार्थी और बालिका मानकर शिक्षा को अग्राधिकार देवे। देवी और स्वजन आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस पूंजी का समुचित उपयोग करने के लिए हमारी विश्वविद्यालयों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ युवा अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके और अपने सपनों और आकांक्षाओं को साकार कर सके। उनको मूल्यपूर्वक शिक्षा प्रदान करनी है। विश्वविद्यालयों पर

ऐसे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है जो सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत हो। युवाओं का ज्ञान तभी सार्थक है जो वो ये मानवता की सेवा, समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बने। मुझे विश्वास है कि भारत की युवा शक्ति अनेक विवेक, ज्ञान, प्रतिभा और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निर्वाहन करे। देवियों और स्वजनों, आज ये विश्वविद्यालय अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहा है। मुझे आशा है कि इस विश्वविद्यालय की नीति निर्माताओं ने भविष्य की योजनाओं का रोड मैप बनाया होगा। मेरा मानना है कि कुछ मूल लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे कदम बढ़ाने से विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय के साथ साथ समाज, देश और उससे भी बढ़कर संपूर्ण मानवता का कल्याण होगा। ये मूल लक्ष्य होने चाहिए। नैतिक आदर्श और संवैधानिक मूल्यों को पाठ्यक्रमों एवं परिसर की संस्कृति का हिस्सा बनाना, कौशल विकास और इंडस्ट्री एकेडमिया सहयोग को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण और कमजोर वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करना, रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों और नैतिक नेतृत्व का विकास करना और सबसे बढ़कर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने वाले नागरिकों का निर्माण करना। हमने वर्ष 2047 को विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ऐसे ही 2036 को ओडिशा को विकसित ओडिशा बनाने का लक्ष्य रखे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी उच्च शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका है। उन्हें ऐसे ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करना है जहाँ पर विकसित

0: ଆପଣମାନେ ଅନୁରୋଧରେ ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ର ଗୀତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବଲପୁର, ସମୟ ରାତି 11:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରିଲେ କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
2: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
1: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं।

0: मंत्री डीके शिव कुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांति गौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी संबलपुर सुनंतु संबलपुरी मुख्य संवाद।
2: आकाशवाणी संबलपुर मुख्य खबर संगे मुई भारत गौरव दास। युवशक्ति सदुपयोग लागि विश्वविद्यालय मानके सकारात्मक वातावरण सृष्टि उपरे गुरुत्व प्रदान कले राष्ट्रपति। 3 दिनिया ओडिशा गस्त अवसर आयबाकाल ट्रेन जरिए जीवे भुवनेश्वर नु ब्रह्मपुर। राज्य बयड प्रभावित लोक को 110 कोटी टंका साहस पैकेज घोषणा कले मुख्यमंत्री। छात्र प्रतिवाद घटनार प्रदर्शनकारीमानकर विरुद्ध रुजु मामलार प्रत्याहार निष्पत्ति राज्य सरकारकर कहले सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा पारिथला उच्चतम न्यायालय विचारपति संख्या संशोधन बिल 2026। प्रकाश पाइला 3टा जाक विधानसभा उपनिर्वाचन फलाफल। बीजेपी, कांग्रेस आउ जनसुराज दलर प्रार्थी विजयी। राज्य कृषि शिक्षा आउ गवेषणा के बरकस करबार लक्ष्य थी छात्र छात्रींकर वृत्ति घोषणा कले सरकार। पुरी रथयात्रा के यूनेस्को ऐतिह्य तालिका थी शामिल करवा लगि केन्द्र संस्कृति मंत्री को चिठी लिखले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप सिटी इकोनॉमिक रीजन लगी प्रकल्प प्रस्ताव के अनुमोदन कला राज्यस्तरीय प्रकल्प मॉनिटरिंग कमिटी। राज्यसभा आईज अणु क्षुद्र आउ मध्यम उद्योग एमएसएमई विकास संशोधन बिल 2026 है पारित। अंगदान गुरुत्व अब्दे लोक सचेतन करबार उद्देश्य आज पालन हला जातीय अंगदान दिवस। राज्य भिन्न भिन्न जगान आज जन अभियोग शुणानी शिविर हला अनुष्ठित। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अध्यक्षता थी पीसीपीएनडीटी आईन संबंधित राज्य सुपरभाइजरी बोर्ड बैठक हला अनुष्ठित। श्रावण मासर पहला सोमवार लगे भिन्न भिन्न शिव मंदिर मानके कावड़िया भिड़। बंद है हीराकूद जलभंडार 4 स्लुज गेट, 13 स्विस गेट देकर बन्या जल निष्कासन जारी। आज मुख्य खबर न शेष होगा। जुहार।
1: सुनिले संबलपुरी मुख्य संवाद। आकाशवाणी संबलपुर चलित अधिवेशन शेष करने पूर्व शुणु आगामीकाल प्रचारित होगा कार्यक्रम संपर्क सूचना। आसंता सका 6:30 आजीर भावना उपस्थापना प्रसन्ना पाणी, 7:10 स्वास्थ्य सूचना शुणिबे। एथिरे विषयवस्तु रहिछि शिशुमानंकु तरल झाड़ा हेले कौन करिबे कहिबे डाक्टर रंजन कुजूर। 7:35 संबलवाणी आलेख्य संकलन एवं संपादना शुभेन्द्र कुमार साहू। 7:55 सुगम संगीत कंठशिल्पी हेले राजलक्ष्मी कवि। 8:30 संबलपुरी गीत कंठशिल्पी हेले नारायण दंसेना एवं सनातन सुना। 8:45 सुगम संगीत शुणिबे कंठशिल्पी हेले साईस्मिता नायक। दिन 11:05 संबलपुरी गीतर कार्यक्रम बजारे बाजाबाला कंठशिल्पी हेले नवीन किशोर आचार्य एवं परशुराम पात्र। 11:30 एवं 12 हिंदी कथाचित्र गीतर कार्यक्रम खुला झरका एवं बातायन शुणिपारे। दिन 12:30 एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। दिन 1:05 संबलपुरी गीत